0: Διακρίνει την αγάπη, την φυνακά, την πόλη, δεν την φάκου μπορεί, την φάκου ρίμ. Ρίμ την φάκου φωνώ, πάνε και στη USA half και μετά η ζάμπου, μπορείς την αγάπη, χάτρα νόμπορ, μοχέρι μου έτσι, κοντρόκο, διακρίνει τύφη, χαβιχή νόμπορ, μοχή νόμπορ, να τώρα αυτά έχουν φάχατα, γιατί σαν διέγκουν τελικά. Ένα έμπορο κούρια, ρίμ, την τύφα, άρη με την χάφου μετά, σε μοχέρα μου έτσι, μοχέρα μου έτσι, κοντρόκο, τηλεφωνώ, αλλά μας είναι κουρανή. Κουρία γάρι με την κυρία Κανάδη, με κουρία να κάνει με μίτσι να κάνει την πόλα. Φάτο με κοντρό κοντά χέρι την φάτο. Κύπαρ Τζεσάλη. Σόλα νούμερο. Φρήμαν. Κύπαρ πόλα. Να κάνω εγώ χάρι τη αποσύνα κουντρία τη. Κύπαρ Αταν Γραφ. Να ρε φρύ ευδε. Κύπαρ Τζεσάλη. Κύπαρ Κάρι. Αν κύπαρ πόλα χώδη έρθει με Τζεσάλη πόλα. Ένα πόλα νουέ νέκε. Dengai kari bosnya kon tedu fadam gak jessa fa gos komusara gide jila dal addi ha minute kole mechu ge addi ha minute kole fengiro dedan sundan kuri ge usa குளத்தின் பதில் குரடி ஃபேபனி தி நம்பர் ஜெஸ்ட் என்ன பதில் சாத நம்பர் குழந்தை பத்தி நூ நம்பர் ஸ்கூலுங்க ஆசிரியர் நூ நம்பர் முக்குன்னு இஹேக்கு பதில் பெப்பி அதி கொடுத்துறேன் போலீஸ் வாங்கி வந்திருப்பா அது போல ஆரம்பித்து போகுது அட்டிய ஹேமிலட் குழைஃபா அட்டிய ஹேமிலட் குழைஃபிங்கிறோம் தேசமும் புரியுக அட்டி அம்மினட் கொலை செஞ்சிடும் தேசமும் புரியுக யூஎஸ்ஏ பொஸ்னியா குந்திரி குறைஃபனுவா அது போல யூஎஸ்ஏ குந்த திஃபா எனக்கு பொஸ்னியா குந்து போல தேவை இருக்கிற ஜெயலாப் மொஹரம் வச்சு குறைஃபனுவா மசே குரணி அட்டி அம்மினட் கொலை வச்சு மேச்சுக்கு தேசமும் புரியுக யூஎஸ்ஏ ஒசினா குண்டே குறி தீர்த்தி ஃபோனுவா அது போல கேரட்டி யூஎஸ்ஏ குண்டே திஃபா குறி அறிமுகத்தை போகிறது ஒரு ஹாஃப் மெதாஸ் யூஎஸ்ஏ ஹாஃப் கிட்டே பொசினியா லீஃபேது ஒசினா குண்டே குறி தீர்த்தி சப்வீஸ் நம்பர் மிமிச் மெஹமிச் மெஹமிச் குண்டோ கொலை அறிமுகத்து தீஃபி குண்டே போல் குறி தேதா குறி தீர்த்தி தீஃபி விஹி நம்பர் குறி போல் சம்பாடி இஸ்மியா இஸ்மியா போல வதில குறி நகாதி ஃபேர்த்து நகாதி போல பார்த்து திஃபா குறியும் திஃபா குறி டிஎர் கேரி குறி குண்டே தீஃபி ஹானம்பர் ஹானம்பர் கொண்டோ கொல்ல ஏரிய பேர் கொண்டே கண கொண்டோ கொல்ல குறி ஃபுனுவாது முதல் தங்க ஃபாத்து ஹானம்பர் பெஞ்சமி தஹரம் வச்சு தஹரம் வச்சு கொண்டோ கொல்ல குறி தீ கொண்டே நட்டோ நகா தி போல ஃபாத்தும் கொண்டோ கா ஜே பாஸ் எஹ கொண்டே குறி ஃபுனுவாது பம் ஃபாரோ திஃபா குறி ரெத்தனே ரிச்சர்ட் திஃபா குறி ஃபுனுவாது போல க சாஃப்ட் மெதாஸ் திபனி யுஎஸ்ஏ கொண்டே யுஎஸ்ஏ கே நோ நம்பர் போல மாஸ்டர் குறி கிட்ட நோ நம்பர் குறி குசா குறி கிந்தி ஃபெஜம் திமே ரங்க ஃபுர்சத்தை திபே கேதி போஸ்னியா யுஎஸ்ஏ ரிகார்டோ பெப்பி ஒரு குஷா கொடுக்க நீ செஞ்சும் பெப்பி ஒரு குஷா கொடுக்க நீ செஞ்சும் போஸ்னியா ஹாஃப் வித்தியாசம் மத்து மத்திய யுஎஸ்ஏ திருப்பணுவாது பார்த்தோம் ரிச்சர்ட் திஃபா குறிப்பாக சார் ஏரிய கனாதே ஃபென் ஜேதா விஜயலி போஸ்னியா குந்தரி போஸ்னியா குந்தரி தங்க ஃபாத்தம் ஹெங் குந்தரி குறை ஃபோனுவா அது போல ஃபாத்தம் பிஃபா ரோபின்சன் தி ஃபாக்கு அனக்கு ஸ்டி ஏரிய கேரி திபிச்சி யூஎஸ்ஏ ஏரிய கேரி போஸ்னியா போஸ்னியா குந்தரி குந்தரி தங்க ஃபாத்த ஜேதா மாபோட ஃபாத்த சென்சா கத்தரி குறி குந்தரி எம்பர் ஃபாத்தம் ஹாஃப் மிதாஸ் ஆம் கீப்பர் கீப்பர் குறி அருமத்தி வேற கேரி ஹாஃப் மிதாஸ் ஆம் போஸ்னியா குந்தரி போல் சாம் குறி ஜேதன் மனோட குண்டரோ கதா குறி திரு திரு கத்திரேன் బెంజమిన్ కుని నగాది మసేపడు నగాది బదులు తనకు ఫహతం హతరు నంబర్ ముహిరమిచ్ ముహిరమిచ్ కొంటో పద ఎవరు ఫహతం కుంటరు ఏన కురియన కస్ ముహిరమిచ్ సెంట్ సకల అరిమతి బోలే ఫ్యాన్ కురి జేహదన కురియన కస్ యుఎస్ హాఫ్ తే బదు లెఫ్ట్ కురి తిరితిని సెంట్ సకల అరిమతి ఎకాస్ నంబర్ కురి ఫోన్ వాది ఏ రెడిల్ జిచ్ కురి దీప్ కొంతరు గన కాయది కొంత నాట్ టు ఆ వన్నని నాట్ టు ఆ ఫేత నగాది ఫహతం రిచర్డ్ దిఫా కురి అనకస్ యుఎస్ కొంతరు అత బోలత్ లెఫ్ట్ కురి గన కస్ బోస్నియా కొంతరు వన్నని వద్ద బ్యాక్ ఫహతం మెహరి మోచ్ కొంటర కొద కురి దీప్ అరిమతి హాఫ్ విదాసం కొంటరంగన కురియ బేరం ఖైర్ యుఎస్ హాఫ్ కి తెరం కురి బదే ఇంగో సేర రహం కురు మసే కురని నట్టు వాలఫ్ తంకు ఫహత జస్సాద ఖా నంబర్ తీత బరితు బదే కురి దీప్ డియర్ ఖైర్ వన్న కొంటర హతర్ నంబర్ హతర్ నంబర్ కురి ఏర రకోతి బి నంబర్ ఎస్మి కొంటర కొద కురి జేహిలఫ్ తంకు ఫాదన క హాఫ్ కి విదాసం ముహరం చేర్త నగా దీప్ ఫాత రిచర్డ్ దీపా కురి బోలస్ అడక సెన్సాక తెర ఫెన్ జేహిలఫ్ బోస్నియా కొంటరిన ಯೋಗತ ಯು ಎಸ್ ಹಾಫ್ ತೆರೆ ಬೋಜನಾ ಕೊಂತ ಕೊಳ ಮುಗಿದ್ರೆ ನೋದಿ ಮೇಟ್ ಕೊಳಬೇಕು ಇತಿರೋಗು ದಿಹ ಮೇಟ್ ದೆಕ್ಕಿ ಹೇಗಿತ್ತ ಮೇಟ್ ಕೊಳೈಫ ದೇಶ ಕುರಿಗೆ ಯು ಎಸ್ ಎ ಬೋಜನಾ ಕುಂತ ಕುರಿ ಫೋನ್ ಆದಿ ಬೋಳ ಬೋಳ ಸಂಕೋಸ್ ವಣ್ಣಂಗದಿನ ಕುಮಿತ್ ಮಡ್ಕೋ ಕುಂತ ನಾಟು ವಾದಿಜೆ ವಾದಿಫ ಕುರಿ ಫೋನ್ ಆದಿ ಬೋಳ ದನ ಕಾರಣ ಬೇರಂಗದಿ ವಾರ ರೀತಿ ಕೊಂತ ದುರ್ಕಣ ಅಮಾಜ್ ಕು ಫೋನ್ ಆದಿ ನವಾರ ನಂಬರ್ ಎಲಬಿ ಗೋಯಿಸ್ ಫೋನ್ ಆದಿ ಬೋಳ ದಿಯೆ ದನ ಕಾರಣ ಬೇರ దాన్ని క్యాన్ని దేఫా వర రీతికి ఫోన్ వాళ్ళు పోలే కారీతి కొంత నట్టు వాళ్ళకి ఫోన్ వాళ్ళు పోలే ఫహాఫ్కి కొలు కురియారు ఫహాఫ్కి ఇతరు అవుతుంది గోతుకు దక్క దిహ మీట్ దగ్గర దెమినేట్ కులి దేశం కులిగి యూఎస్ఏ యూఎస్ఏ హాఫ్ తిరిగి భోజనా కొంత బోళతే అత్తే తమ ఫహాత్ దిహి నంబర్ ఎస్ ఫోన్ వాళ్ళు క్యాది కొంత గాయత్రి రోబిన్సన్ రోబిన్సన్ బ్యాక్ ఫహాత్ దిహ్లాఫ్ క్యాది కొంత నట్టు ఆఫ్ నో నంబర్ నో నంబర్ జస్సాది బోళ బోల్ ఫ్యాన్ రికార్డు రికార్డు పెప్పి పెప్పి కురి అరిమతి కొంత దీఫేన బ్యాక్ ఫహాత్ జస్సాది మీద క్యారీ అంటే యూఎస్ఏ కొంత యూఎస్ఏ కొంత కురి ఫోన్ వాళ్ళు దేకొంత దేతారే రీచార్డర్ రీచార్డ్ కురి దీఫేర్ ఎక్కడ పెప్పి పెప్పి బోల్ కొట్టేరితే వండంగదని తమ ఫహాత్ అని చేస్తాది రీచార్డ్ రీచార్డ్ ఎవరు ఫహాత్ తమ ఫహాత్ జస్సాది కురి ఫోన్ వాళ్ళు బోల్ దూ ఫారని కొంతరే వర బార్ ఎవరితే కురి ఫహాత్ బోల్ మడుకోదా బోల్ కరి మడుకోదా హోరి బోజ్నియా కొంతరే బోల్ హోతి ఎన్ఎం సేన వెట్రీ క్యారీ దియా యూఎస్ఏ అన్ నంబరు ಮೆಕ್ಲಿನ್ ಕುರುಕು ಸಾಗುವಿಕೆ ಬೋಸ್ನಿಯಾ ದಿಹ ಮಿನಿಟ್ ತೆರೆ ತೀನ್ ಮಿನಿಟ್ ಕುಳಿ ಬಾಕಿ ಹ್ಯಾ ಮಿನಿಟ್ ದೇದನ್ ಸುಂದನ ಕುರಿಗ ಯುಎಸ್ ಬೋಸ್ನಿಯಾ ಕುಂತಿನ ಮೆದು ಮತ್ತಿ ಬೋಳ ಕೊಂಚೋಕ ಬ್ಯಾಕ್ ಫಹಾದ ಜೈಸಾದ ಮೆಹರೋ ವಿಚ ಮೆಹರೋ ವಿಚ್ ಕೊಂಟ್ರೋಕ ಕುರಿ ದಿ ಫಾಫ್ ಗ್ಯಾಕಂಡ ಮೆದಾ ಸಮ ಇತರು ಕುಂತಿನ ಕೊಂಟ್ರೋಕ ಕುರಿ ಬಾಣಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ಬೆಂಜಮಿನ್ ತಹಿರೋವಿಚ್ ತಹಿರೋವಿಚ್ ಕೊಂಟ್ರೋಕ ಕ್ರಿಸ್ಟನ್ಸಾಕ ಕ್ಯಾರಿ ಮೆಹರೋ ವಿಚ್ మెహరో మిచ్ కురియ మిత్రం హోస్ కురి ఫోన్ అది బోల్ యుఎస్ హాఫ్ కి మిదాసం మేమిచు మేమిచు నగా నగా ది బోర్డ్ ఇర కారి రీమ్ దిఫా కురి యుఎస్ కి రీమ్ దిఫా కురి ఫోన్ అది బోల్ అసన్ సా కతరే కురి హతర నంబర్ హతర నంబర్ ముహర్ మిచ్ బ్యాక్ ఆఫ్ ఫహత్ జస్సా దే కుంత్ర కన కుంత్ర కొద కురి ఎన కి యుఎస్ హాఫ్ కి తరే కురి బోస్నియా కుంత్ర ఫోన్ అది బోల్ ఫహత్ రోబిన్సన్ దిఫా కురి బోల్ హాఫ్ గా కన మిదాసం చిల్మెన్ చిల్మెన్ నట్వాల్ ఆఫ్ కురి వన్నెస్ పెప్పి పెప్పి వరితుకు నట్టు వస్తే అక్కడ ఫహాత్ రిచర్డ్ రిచర్డ్ కురి పెప్పి పెప్పి దూకొలి రిచర్డ్ రిచర్ కొంటో కొల కురి పెప్పి పెప్పి ఫహాత్ పోదు రిచర్డ్ రిచర్ అట్లా హ్యాక్ ఫహాత్ రోబిన్సన్ మిత్రం క్యారీ కురి తిరి తిరి ఫోన్ వాళ్ళు భోజనం హాఫ్ తిరి టిల్మే టిల్మే కొంటో ఒక స్వాండ్ హాఫ్ మీద కురి చేయలే పరిమితి బోల్ మీద దెక్కుంటే మసేకునే భోజనకి క్యారీ ఎప్పుడే మేమిచ్ దెంగాకుంటే పెట్టి పెట్టింది టిల్మే గ్యామ్ వచ్చి పెట్టింది లేకపోతే పేరు బోల ಯುಎಸ್ಎಗೆ ಸತಾರ ನಂಬರು ಚಿಲ್ಮೇನ್ ಬೋಲ್ ಫ್ಯಾಮನ್ ನಂಬರ್ ಸೆಪ್ ಇತರ ಒಂದು ದೆಕ್ಕಿ ದಿಹ ಮೇಟುತ್ತಾರೆ ಹತ್ರ ಮೇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ದೇಶ ಕುರಿಗೆ ಯುಎಸ್ಎ ಯುಎಸ್ಎ ಕೊಳೆ ಮುಂದಾನೆ ಎಕ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಮದುಕ ದಿಹ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಆಯ್ತು ಯುಎಸ್ಎ ಕುಂತ್ರ ಬದಲಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾಬಣಿ ನೆಕ್ಡಿ ನನಗೆ ಬದಲು ಒಪ್ಪಳೆ ನುಕ್ಕೊಳ್ಳೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ನಂಬರ್ ನೆಕ್ಟಿನ ಬದಲುಗಾ ಜೋಸೆಫ್ ಹತೆ ರೇಣ ರೀನಾ ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿ ರೀಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಫಹಾದ್ ಗಿಸ್ಸಾದಿ ಹಾಫ್ ಗ್ಯಾಕ್ ಮೆದಾ ಸಾಮ್ ಯುಎಸ್ಎ ಕುರ್ತರೆ ಕುರಿ ಹಾಫ್ ತೆ ಕುರಿ ಫೋನ್ ವಾಲ್ ಬುದ್ಧಿ ಫಾರಾನಿ ಕುರ್ತರೆ ಕೋ ಏರಿತೆ ವಾದೆ ಜಿ ಬದೆ ಕುರಿ ಫೋನ್ ವಾಲ್ ಮಸೆ ಕುರಿ ಬೋಲ್ ಫಾತುಂಗ ಹತರ್ ನಂಬರ್ ದಿಫಾ ಕುರಿ ನೆಹರೋ ಮಿಸ್ ದಿಫಾ ಕುರಿ ಏರಿಯಾ ಕಾರ್ ದಿಬೆನಿ ಯುಎಸ್ಎ ಕುಂತರೆ ಕುರಿ ಫೋನ್ ವಾಲ್ ಬೋಲ್ ದಿ ಹೊರತನ ಮತ್ತೆ ಬೇರ್ ಯುಎಸ್ಎ ಕುಂತರೆ ಏರಿತೆ ಬದೆ ದಾಫ್ ಕುರಿ ಫೋನ್ ವಾಲ್ ಬೋಲಾ පුර දැනමති බේරවිදේ නොදිහමට කුළුවගෙන් පහවා දෙක්කි දිහමට දිහමට තන පස්මට කුළ පක් පස්මට දෙදන සුන්දන කුරග යුස බොස්නයා කොන්තර බොස්න හාතන කර ජෙද සන්සක අරිමති ගුර කොන්ත දිශන කොටක කර ජෙද කර දී මදර හොරස්ක කුරිය යුස හාතන කොන්ත දිශන කර ෆනවා බුදු පාරණ යට තරය බොස්නයා කොන්තර ලස් සජ මාබොඩ පහත් දිපා කුර නක බොස්නයා කොන්ත අත්ත අපි දමසක කහල වෙට දිය බෝල අත්ති කාරි යුස ග රිචඩ් දිසර ගෝල්ත බ අප පහත රීම් රීම් කොන්තර කර කර ෆනවා ද කොන්තර න පහත සාද නම්බර ආදරම ප්‍රොෆනවා ලිබෝල ඇස් කැකටක හාෆ් මෙදාසම් USA කොන්ත ප්‍රොෆනවා බුදුව ෆාරන USA කොන්ත ස්කොන්ටෝක කීපර් කුමජි කීපර් දිපාක් යරිමත් බෝල බේර හාෆ් මෙදාසම් පිටර වගුතු හාමියට් කුලවිච් දිහෙමට දක්කා පොතු බොස්නිය හාෆ් ට්‍රින් ඒරියා කනාදම අරිමත් ලිෆේදු USA ಇದೆ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ 32 ದ ಯುಎಸ್ಎ ದಿ ಬೋಸ್ನಿಯಾ ಮತ್ತು ಕ್ರಾಮ್ ಚಿಕ್ಕಣು ಯುಎಸ್ಎ ಕೊಂತೆ ಬೋಲ್ ಸಂದ ಅಮ ಸೆಕ್ಯುಲ ಅರಿ ಮತ್ತು ಬೋಲ್ ಬೇರ್ ಎಲ್ಲು ಬೋಸ್ನಿಯಾ ಬೋಸ್ನಿಯಾ ನಿಲ್ಲಂಗ ಸಿರೇ ಆ ಡೆಡಿಚ್ ಡೆಡಿಚ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಫಾತ್ ಕೊಂತೆ ಕನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೊಂದ ಕುರಿ ಸಂಸ ಆ ಡಿಎರೆ ಬೇರ್ ಬೆಂಜಮಿನ್ ತಹಿರೋವಿಚ್ ತಹಿರೋವಿಚ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೊಂದ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಫಾತ್ ಮೆಹರೋಮ್ ವಿಚ್ ಮೆಹರೋಮ್ ವಿಚ್ ಬೋಲ್ ಹಾ ಕೋ ಜೇದಾ ತೀತಿ ಕು ದೀಪ್ ಮೆದರೋ ಅಕೇರಿ ಎಸ್ಮಿ ಎಸ್ಮಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೊಂದ ಕುರಿ ಗಸ್ ಮೆದೋ ಹೊಸ್ ಕು ವಾದಿ ಲೇಫ ಕುರಿ ತೆಂಗಳ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಫಾತ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಆಗತ್ತರೆ ಗುರು ಕುಂತಿರ ಡಿಫೆನ್ ಬೋಲ್ ಹಾ ಕುರಿ ಜೇದಾ ಕುರಿ ಗಸ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಆಗಲ್ ಬೇರ ಕುರಿ ವಾದಿ ಲೇಫ್ ತೀತಿ ಕು ದೀಪ್ ಹಾಫ್ ಟು ಮಿದಾಸ ಹಾ ನಂಬರ ಹಣಂಬರ್ ತಹಿರೋವಿಚ್ ತಹಿರೋವಿಚ್ ಕುರಿ ದೀಪ್ ಏರಿಯಾ ಕಾಯ ಗುರು ಕಾಯ ಗುರು ಮೆಮಿಚ ಮೆಮಿಚ್ ಕೊಂಟೋಕ ಕುರಿ ದೀಪ್ ಏರಿಯಾ ತಬಣ ದೇ ಕುಂತೆ ದಿನ ಜಸಾಗ ಫಾತ ರೀಮ್ ದಿಫಾ ಕುರಿ ದಿಫಾ ಕುರಿ ಫನವಾ ಬ್ಯಾನ ಕಿಸ್ ಬೋಸ್ನಿಯಾ ಕುಂತೆ ಬೋಸ್ನಿಯಾ ಕುಂತೆ ಜಸಾಗ ತಕ ಬಾರು ಗಿ ರೋಬಿನ್ಸನ್ ಬೋಲ್ ಅತ್ತ ಪೆಪಿ ಪೆಪಿ ಕಾಯ ದೇ ಕುಂತೆ ಬೋಲ್ ಅತ್ತ ಮೆಮಿಚ್ ಅತ್ತ ಕುರಿ ಯುಎಸ್ ಹಾಫ್ ಕಕನ ಕ ಮೆದಾಸ ಮ ಅರಿಮತಿ ಕುರಿ ದೀಪ್ ಏರಿಯಾ ಕನಾದ ಮ ಕುಂತೆ ರೇಕನ್ ಕೊಂಟೋಕ ಕುರಿ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ಕ ನಟ್ಟುವಾ ದೇ ಕಾಯ ದೇ ಕುಂತೆ ನಟ್ಟುವಾ ತಕ ಫಾತ ಮೆಮಿಚ್ ಮೆಮಿಚ್ ಏವರ್ಸ್ ಕುರಿ ಸಪ್ವಿಸ್ ನಂಬರ್ ಸೀತಾ ಗೋಲ್ ದಿ ಮಾಸ್ ಫನವಾ ದಿ ಬೋಲ್ ದಿ ತನಿಕಾರ ದೇ ಬೇರಾ ಸಬ್ ಪೀಸ್ ನಂಬರ್ ಫನವಾ ದಿ ಬೋಲ್ ದಿ ತನಿಕಾರ ದೇ ಬೇರಾ ಮೆಹಮಿಚ್ ಫನವಾ ದಿ ಬೋಲ್ ಬರ ರೀತಿ ಕುಂತೆ ತನ ಫ್ರೇಡ್ ಗೆ ದಿ ಕೀಪರ್ ರೈ ಬಿಸ್ಕುರಿ ಅತನ್ ಜಸನ್ ಮಸ್ ತನಿಕಾರ ದೇ ಎಂಬ್ರಿ ಗೆ ಬೋಲ್ ದಿ ಬರ ಬರ್ ಫನವಾ ದಿ ಇತಿರೋಗದು ದಿಹ ಮಿನಿಟ್ ಕುತ್ತೆರೆ ಅಮ್ಮಿನಿಟ್ ಕುಳೈಫ ದೇದನ ಸುಂದರ ಕುರಿಗ ಯು ಎಸ್ ಎ ಮೆದುವಾಕ ಯು ಎಸ್ ಎ ಕುಳಿತ ಬೋಧು ಕುರಿ ಫನವಾದ ಬೋ ಮೆದುವಾಕ ಬೋಳತ್ತ ರಿಚರ್ಡ್ ರಿಚರ್ಡ್ ಬೋಧು ಕುರಿ ಫನವಾದ ಬೋಳ ಬಹತ ಮೆಹರಂ ವಿಚ್ ಕುರಿ ಫನವಾದ ಮೇಲೆ ಸತ್ತಾಫ ಬಹತ ಭೋಜನ ಕುಂತೆ ಬೋಳ ಸಂ ಕುಸ್ ವಂಡರ್ ಹಾಫ್ ಕು ಮೆದಾಸ ಕುರಿ ಜೇದ ದೇರ್ ಮದ ದೇ ಕುಂತೆ ಬಾದ ಕುರಿ ಫನವಾದ ಬೋಳ ಆದಿ ತಂಡಿಕಾರ ದೇ ಬೇರ ಮಿ ಫಾರೋಸ್ ಸಬ್ ವಿಸ್ ನಂಬರ್ ಫನವಾದ ಬೋಳ ಮೆಹಮಿಚ್ ಫನವಾದ ಬೋಳ ಮಿ ಫಾರೋಸ್ ಮೆಹಮಿಚ್ ಕ್ಯಾರ್ ಕ್ಯಾರ್ ಗದಿ ಹಮದ ಫನವಾದ ಗೋದ ಮಾಸ್ಕ ದಿಹಮದಿ ದಿಫರಾತ್ ದರಿಕಾರ ಕ್ಯಾಗಣಕ ಸೆನ್ಸಾಕ ಕ್ಯಾರಿ ಮೆದುರು ಮತ್ತು ಬೋಳ ಬೋಳ ಹಾಕಿ ಜೇದಾಕ ತೀರಕ ಜೇದಾಕ ಫನವಾದ ಫನವಾದ ಬೋಳ ಗೋದ ಮಾಸ್ನ ಬೇರತಿ ಏ ನಿಹಾಫ್ ಕೊಳ್ಳಿ ಕೊಡ್ತೀಯ ಮೆಹಮಿಚ್ ಬೋಳ ಕುರುಮತಿ ಯುಎಸ್ಎ ಫನವಾದ ಬೋಳ ಮೆದು ಹೊಸ್ ಭೋಜನ ಹಾಫ್ ದಾಂದಿ ಬೋಳ ಭೋಜನ ಕೊಂತೆ ಬೋಲು ಪಿಪಿ ಗ ಜೇದ ಫಹದ ಬೋಸ್ನ ಕೊಂತ ದಿಫಾ ಕುರ್ ಬೋದು ಫಾರಾನಿ ಕೊಂತರೆ ಕೊ ಕ್ಯಾರಿ ದೇ ರೀಮ್ ವೆಟ್ಟಿ ಜಿ ಹನ ಮಸೆ ಕ್ಯಾರಿ ಹೊರಿ ಬೋಸ್ನಿಯಾ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ದಿಹ ನಂಬರ್ ಡೆಮಿರೋವಿಚ್ ಕುರ್ ಕೊಸಾ ಗುಳಿ ಗೆಂದಿ ಫೆಜಂ ಬೋಸ್ನಿಯಾ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಡೆಮಿರೋವಿಚ್ ಆದಿ ಯುಎಸ್ಎ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೀಮ್ ಅತೆ ಕೊಂತೆ ಬೋಳೆ ಮಸೆ ಕುರಿ ರೀಮ್ ಬೋಲಿನ ಜಹ ಮಸೆ ಕುರಿ ಮಸ್ಕಾರಿ ದೇ ಕೊಂತೆ ಕಾಯ್ತಿ ಫೆನ್ ವೆಟ್ಟಿನೆ ಈ ಫೆಜೋ ಕುರಿ ಫನವಾದ ಜಾಗಣ ಹಾಫ್ ಕಿ ಮಿದಾಸಮ್ ಯುಎಸ್ ಹಾಫ್ ಕಿ ತರೆ ಯುಎಸ್ ಅಗಜೋ ದಿಹ ಮೇಟು ಕಿ ತರೆ ನುವ ಮೇಟು ಹಾವೆ ದಿಹ ಮೇಟು ಕೋ ಸಮವಾಂಗ ಇದನಿ ಬ್ಯಾಕಿ ಫನರ್ ವರಕ ಸಿಕುತ್ ಕುರಿ ಫನವಾದ ಫನವಾದ ಬೋಳ ಅಸ್ ಮಿದೋಸ್ ಕು ದಾಂದಿ ಬೋಳ ಫಾತು ಬೋಸ್ನಿಯಾ ಹಾಫ್ ತೆ ಬೋಸ್ನಿಯಾ ಕುಂತರಿಯ ಮೆಮಿಚ್ ಬೋಲು ಜಹದ ಬೋಳರ್ ಮತಿ ಬೇರ್ ಫಾತು ಬೋಸ್ನಿಯಾ ಕುಂತರಿಯ ತೀತೆ ಕ್ರಿತಿ ಹಾಫ್ ಮಿದಾಸ ಕುರಿ ಫನವಾದ ಬೋಳ ಹಾಕಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಕುಳು ನಿಬಿಗೆ ಎದಿಯ ಫೋರ್ ಗದ ಕುಳು ಮುಖ ಫಾವು ಎಕ್ಕುಳು ತಿನ ಮಧುಕೊಂ ಕುಳು ದೇಶ ಮಕ್ಕು ಮೆಚ್ಚು ಕಾಮೆ ಒಕ್ಕೆ ಯು ಎಸ್ ಎ ಮೆಚ್ಚು ಕಾಮೆ ಒಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚು ಕಾಮೆ ಕುರುಮ ಹಾಕಿ ಯು ಎಸ್ ಎ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ 16 ಜಾಗ ದಿಗ್ನ ಅದು ಗದ ಸೋಳ ಜಾ ಕಶೋರ್ ಕುರಿ ಈ ಮೆಚ್ಚು ಕುಳು ನಿವು ಮ್ಯಾಕ್ ಅವಳು ಬೆಸ್ತಂತೆ ಕುಮಚ್ಚು ನಿಮ್ಮದ ನೀವು ರಮಿಜ ಹವಾ ಪದ
1: ಶುಕ್ರಿಯಾ ವಾಸಿಫ್ ಅದು ಅಮೆರಿಕಾ ಮಿಹಾರ್ ಮೇವಣಿ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ 16 ಅಗೋಸ್ ಹೆಮ್ವಿಮ ಅಮೆರಿಕಾಯ ದೆನ್ ಬದಲು ಕುರಾಣಿ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಅಮೆರಿಕಾ ಬದಲು ಕುರಾ ಮೆಚ್ ಒಣ್ಣಾಣಿ ಜುಲೈ ಮಹ ಹೆವಣ ದೋಗ ಫತಿ ಫಹಿಚಾರ್ ಅದು ಮಿಹಾರ್ ಒಳಮೆನ್ನ ಮಿ ಫೆನಿಗೆ ಮಿದಿಯ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ 16 ಟೀಮ್ ತಕ ಬ್ಯಾದಾರುಗ ಪೆರಗ್ವೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಎಗಿತ್ರುಂ ಕೆನಡಾ ಮೊರೊಕೊ ದ ಮಿಹಾರ್ ಮಿಯೈ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಯು ಎಸ್ ಎ ತೆನ್ ಬ್ರೆಜಿಲ್ಲ ಜಪ್ ಬ್ರೆಜಿಲ್ಲ ನೋವೆ ಏಗಿತ್ರು ಮೆಕ್ಸಿಕೋಯ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮಿಹಾರ್ ಮಿ ಅಳಮೆನ್ನ ಪೆನಿಗೆಂದಿಯ ರೌಂಡ್ 16 ನಂಗೆ ರಿಹಾ ಕುಲ ಗಾಮ್ ತಮ್ಮಿ ದಣ್ಣವಾದವಣಿ ಮಿರೆ ತಿಬೆ ಫುಣ್ಣ ಅಳಮೆ ಮಿಯದಕ್ಕೂ ದೆ ಮಿರೆಗೆ ಬಾರ್ ಜಹಾರ್ ಹಿಂಗೆ ಜುಲೈ ಮಹೋಗಿ ತಿಮ್ಮಣ ತಿಮ್ಮಣ ಬಾರ್ ಜಹಾರ್ ಉಣ್ಣಾಣಿ ಸ್ಪೇನ್ನ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ ಬದಲು ಕುರಾಮೆಚ್ ಫತಿ ಹತ್ತಿರ ಜಹಾರ್ ಉಣ್ಣಾಣಿ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಕ್ರೋಯೇಷ್ಯಾ ಬದಲು ಕುರಾಮೆಚ್ ಮಾದಮ ಹಿಂದಿನ ಅಶಿತ್ ಜಹಾರ್ ಉಣ್ಣಾಣಿ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ಅಲ್ಜೇರಿಯಾ ಬದಲು ಕುರಾಮೆಚ್ ದೆ ಮಾದಮ ರೇ ಎಗಾರ ಜಹಾರ್ ಉಣ್ಣಾಣಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಖೇಪ್ ವಾಡೆ ಬದಲು ಕುರಾಮೆಚ್ ಮೀ ಕುರಿಯಂ ಹೊರೆ ಮೆತ್ತ ಅವಳು ಮೀ ದಣ್ಣವಾಲಿ ಮಿಹ ಹಿಸಾಬ್ ಅವಳು ಮೆಂಗ್ ತಿಬೆ ಫುಣಾಹ ಮಿಯ ಮೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ದೇಹ ಸಭ್ಯ ಹೋಗಿ ಮೆತ್ತ ಗಣಿತ ಮುಣಕಾಗಿಂದ ಹಾಸ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮೇ ಓತ ಮಿ ನಿಮ್ಮಾಲಿ ರಾಹುಲ್ ಕರವಿಯ ಮಿರೇ ತಿಬೆ ಫುಣ ಬಾರ್ ಜಹಾರ್ ಬದಲಕೊಂಡು ಒಮ್ಮಿದ ಮಿಹ ಹಿಸಾಬ್ ಪ್ರವಾಹ ನಿಮ್ಮಾಲ ಬಕ್ವೆದಾನ ದೆನ್ ಕುರಿಯ ಉನ್ನಾಣಿ ದೇಹಿ ರಾಜ್ಯ ಗಾಡು ಗಣಿಸ್ತೇ ಖಬರ್ ಖಬರ್ ಯಾಕೆ ಬದಲು ಕುರಾಣಿ ಅಜಿತಾ ಫಾರೂಕ್.

0: Mamma, badu havajja.
1: Tarifla, Sonia gata buni. Mamma ibeche mege muluwa.
0: Papa, gadi jehaniye.
2: Tarifla madu kobbada.
3: Sonia, debel maasha school anda.
4: Tumhi ne to kaha tha. कि सच्चा प्यार सबसे बड़ा होता
0: मामा
4: किस वजह से
5: मामा फोन एक का हाँ मादमारे तैयार दावी थाना कड़ी वाइपर कराना
0: मामा वैस फोन का डोंटा
6: कोको डोंटे कमी कड़ी गाले नूले वेने दे सोनिया गाता
7: एहनी गुलुंता बदहि कुराफा दान एम गातु गावा गुलुंतका एम फुरतम स्कंदेमा
8: राज्य के कोम हिसाबे गहुरिगेम बस एबस आगे देखुम कानुला पीएसएम के चेरलता फोनु अडु हाला बलालुम फसेह गोते
9: पीएसएम एया
7: दिवे राज्य के आड़ा दीनु के आड़ो अधि दिवे एफएम विस आड़ो हाल वेने
8: टीवीएम यस टीवी अधि पीएसएम न्यूज़ बला लेने
9: पीएसएम एआर
7: आईओएस अधि एंड्रॉइड फोन तकुं डाउनलोड करे वेने
8: पीएसएम एआर
7: अब हाँ फोन डाउनलोड करवा

0: Toba, konka la wahake mi kudi.
1: Wara riti wahake.
0: Ema riti wahake gotka mi kudi mi balani kine ta mi vi mi wahake aga.
2: Ali mewagas buni gotan nohedima. Ege faha ege bena nohifuni.
0: Aha. ए मिवाह का मियोलेन कोण्ने में क्या कुछ के
1: अली
0: अली अली एक्वेरिया का मियोलेनी
1: मेवागस
0: तो ए मिमा मेवागस कोम में दुआ का अली अखा में कोद दे कौन कम से मी कोद देनी
1: मेवादे
0: आ मेवादे तो ने अली मी उले मुं बड़वे के गोस अली बेनों भी कौन कम एक पुरा
1: अली के आला
0: के एम फरता माली बेनों भी लारी बेन मणि तो फैसा बेन बे बनी तो देन एकम को फैसा ली बेन गोते वेदो अलीया असलुगा बस कांडा ना लाई कों गोते
2: गहो मेवा बिंदे गेन बाजार गोसा बिका
0: वरर रंगल कमे दो ए अलीया असलु हम ली बेन कों मे दुहा को गस कांडा नु लियस गहो मेवा लिबे आ इंदा को अलीया ए मेवा ता bigen goskin ki kolleveni
1: vikkaveni
0: kagen aliya fasa libene do eka maliya ka na bodo kanwe visne do ekame
1: labba
0: sunta den ali ki kuri anika gas derwa gotakan anika skanta kurewuni do gas buni ki ke kontane khandala ase kombata ke khandam buni kahuge
1: coffee
0: ah gofi ta khandala re gas budun khanda anu lacche buni do eka megota taliya kanta kurewuni ali kine edi
2: बुडुम बुडुम बुडुम
0: हां ओफिता कंडाला पादी गाव के बुडुम वेस पुरी कोली दो कंडाली एमी मदेन गस कीने मिवी
1: मारू
2: मारू गरुवी
0: एम आलिया देन अली के एकल एक्वेरी रहमतेरी गस मिसाब कीने वी
1: मारू
0: मारू के गेलो नि अली के रहमतेरी नुदी बणो दो एम एक फहुम अली अम्मी मा फहुम मी एकमा मेदु विस्तुनी एहनो
2: लब्बा
1: लब्बा
0: गस बुने दिने दो बैवरु गुत्ता हदिया लिबे अली यही एनु कोइंगोत के किया दिनी गस
3: मैं बसान नल्लो बिवा वहका
0: इमी दका वहका की कुरंबी
2: अडुवा
0: अडुवा हाजे एरुने इमी दका वहका मिकु दिन एंगे एनी दो देन अदि किया दिन हिं कमे बेस देन को कमे
2: ही तेरि वेदिनु
0: मी हुन नंग ही तेरि वेदिनु देन अदि वर मुहिम क मने गहा एकीगा
2: कुळु कुळु
0: हां कुळेंग नंग एब्बस विदो
2: लब्बा
0: एहनु एम गस बुना गतुं हदिया की हम एकनी दे दे इच्छे नूं दो एके बदल गस किया दिनी कौन कंत तके
1: एहें कुदिल कुले कुले कुले बाबरी कुरु
0: हाँ ईवस खामे दो हम एको तं हदिया के बुने वेदो वारा गिने मी कुदी मी हुना बदल वी मेस की को लाशे बुने ने अब दोस
1: सलाम
2: सलाम कोला
0: कीने सलाम कोला जेनी बाला
1: हिनितु
0: मुमाय को बदस सलांग वाला शिदो हिनितु मुमाय की वस मिहुन देवे कोचे
2: हादिया हादिया
0: ये के सबबो मिकु दिन नवे सेगे फायदा कुरे सवाब लिबे दो
1: लब्बा
0: ए मी मदें मिकु दिन हंदां कुराती मिकु दिन कुरा कांगम ग एहें कु दिन दुर को लाफ बातिबुम ग बदल ग की कुरानी मिकु दिन ये कु दिन एकु दिन बैवरी कोल्लाने वारर रंगल एकु दिन बैवरी कुरिया गेंदा आनी दो एरा हुरिहा कुदिन बस एगा बैरी वेवेने हेम हुरिहा कुदिन सिबेने उफलों दो मीगा मुहिम मुकमकी एहेन कुदिन उफा को दिनो दो हिंगम जस्सा दिनो एन्नु एहेमी मा हदियागा बदलगा मा बडो एच्चे देवेन नेतस मी मिकुदिन को लेवेने कुडा कुडा कामे दो
1: लब्बा
0: एम कुदिन उफा
4: कुडा कुडा कार्ड वेस
0: देवेने वरर रंगल कुडा कुडा कार्ड सम देवी दाने दो हम एगो त एक कुज कैरी गबने दान वर लोबी वेवे सम एन्नु एगो स्वर उफा वाने कामे कुदिन दो तीवरा मुही मुकुज्जे के एकाल एच्ची बने वरन एकुज्जा या बेनुम वाकाल मिसाल का रीति एच्चे बस बने थी वहाँ दर रीचे हाँ दर रीति हेतु में के एकाल एच्चे बने ली मेंस ये एकुदिन वरन उफा वाने दुआ का वाने दो
1: लाबा
0: एमी मम्मी वाका गुले गस बुना गोतुन नमा मामा में ने के लोबी वावा का बुनुमा की तिकुदिन के फरातु मामा में न देवे कोचे
1: हादिया
0: है दो ऐ मैं ती कुदिन स्वाने मम्मा में ना हादिया है दिनों के गोतू मम्मा में दिके लोबी वाक बरगीने हम बुने लम्बाने गे हमें के ने मम्मा में ने नू बुनानी कुदिन दिके लोबी वाक मैं कुदिन में स्वाने बरगीने मम्मी आ बाप्पा इबने फाक कुदिन दिके वेस लोबी वाक का बुनम्बाने दो

0: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিস কুরআন হবে, লা তাআতা লি আহাদিন ফি মাসিয়াতিল্লাহ ইন্নামাত তাআতু ফিল মারুফ, মানে আল্লাহ উরা দেবে এভেস কামেগা মিহাকা কিয়া মাম্বু মেনুবে হামাকাশওয়ারুং কিয়া মাম্বু বানি হেও কামকামুগে।
1: ದಿವಿರಾಜ್ಯ ಗ್ಯಾಡು ಮಿರೆ ಹೆಗ್ಗಡಿ ಸಾಳಿಸ್ ಎಮಿನೆಂಟ್ ಗಮಿಗೆ ಎಣಿಸ್ತೀನಿ ಮಿರೆಗೆ ಈಶಾನ ಮಾಧುವಾಗುತ್ತಗೆ ಪಂಗಿಯ ಪಂಗಿದ್ವ
2: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹ್